0: In today's All India program of music, we bring to you a classical vocal performance by Vidushi Smita Mukashi.
1: सुरों की साधना और शास्त्रीय गायन की समृद्ध परंपरा को आत्मसात करने वाली आकाशवाणी और दूरदर्शन की टॉप ग्रेड कलाकार विदुषी स्मिता मोकाशी पंडित अजय पोहनकर जैसे दिग्गज गुरुओं के सानिध्य में तराशा गया स्वर है.
0: अ टॉप ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी एंड दूरदर्शन विदुषी स्मिता मोकाशी हैज डेडिकेटेड हरसेल्फ टू द परस्यूट ऑफ नोट्स एंड थरोली एब्जॉर्ब द रिच ट्रेडिशन ऑफ क्लासिकल सिंगिंग. Her voice has been beautifully nurtured under the guidance of legendary gurus, including Pandit Ajay Pohankar.
1: Tansen aur Amir Khan jaise pratishthit samaroh ki aap shobha bada chuki hain. Prayag Mahakumbh se lekar London ki Nehru Center tak aapne apni gaiki ki chhap chhodi hai.
0: She has graced prestigious music festivals like the Tansen Samaroh and Ustad Amir Khan Samaroh. Leaving an indelible mark with her singing from the Prayag Mahakumbh to the Nehru Center in London.
1: आपको कलाश्री और मोहम्मद रफी जैसे कई सम्मानों से नवाजा गया है. आपकी प्रस्तुतियां न केवल तकनीकी रूप से सुदृढ़ है बल्कि उनमें भारतीय संगीत की गहरी रूहानियत भी झलकती है.
0: Honored with several accolades, including the Kalashree and Mohammad Rafi Awards. Her performances are not only technically flawless, but also deeply reflect the soul of Indian classical music.
1: आज आप सर्वप्रथम प्रस्तुत कर रही हैं राग मारू बिहाग. विलंबित रचना एक ताल में निबद्ध है जिसकी बोल है मान तज देहो प्यारे. मध्यलय तीन ताल में निबद्ध रचना की बोल है मानो न जियरा मोरा. और एक ताल में निबद्ध द्रुत रचना की बोल है मानो ना ही तुमरी बात. आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं गांधार राजहंस और हारमोनियम पर प्रमोद बोरगांवकर.
0: टू बिगिन हर रिसाइटल टुडे शी प्रेजेंट्स राग मारू बिहाग. द फर्स्ट इज विलंबित कंपोजिशन सेट टू एक ताल विद द लिरिक्स मान तज देहो प्यारे. दिस इज फॉलोड बाय अ मध्यलय कंपोजिशन सेट टू तीन ताल विद द लिरिक्स मानो ना जियरा मोरा. शी कंक्लूड्स दिस राग with a drut composition set to ektal with the lyrics manu nahi tumri baat. Accompanying her on the tabla is Gandhar Rajhans and on the harmonium is Pramod Borgaonkar.

0: ये था विदुषी स्मिता मोकाशी का गायन राग मारू बिहाग। स्मिता जी अब प्रस्तुत करने जा रही है राग रागेश्री। त्रिताल मध्यलय में निबद्ध रचना की बोल है साजन बिन सुनी एरी आली और द्रुत एकताल में निबद्ध बंदिश के बोल है राग संग रागिनी मिल मंगल गाई।
1: ट्रांजिशन एंड राग रागेश्री दैट वॉज विदुषी स्मिता मोकाशी रेंडरिंग राग मारू बिहाग। स्मिता जी विल नाउ प्रेजेंट राग रागेश्री। द फर्स्ट इज मध्य लय कंपोजिशन सेट टू त्रिताल विद द लिरिक्स साजन बिन सुनी एरी आली। दिस विल बी फॉलोड बाय अ द्रुत बंदिश सेट टू एकताल विद द लिरिक्स राग संग रागिनी मिल मंगल गाई।

0: विदुषी स्मिता मुकाशी द्वारा प्रस्तुत ये था राग रागेश्री। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे गांधार राज हंस और हारमोनियम पर प्रमोद बोरगांवकर।
1: यू आर लिसनिंग टू राग रागेश्री प्रेजेंटेड बाय विदुषी स्मिता मुकाशी। अकंपनिंग हर ऑन द तबला वॉज गांधार राज हंस एंड ऑन हारमोनियम वॉज प्रमोद बोरगांवकर।
0: ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति थी। इसके साथ ही आज की अखिल भारतीय संगीत सभा संपन्न होती है।
1: दिस प्रोग्राम वॉज अ प्रेजेंटेशन ऑफ आकाशवाणी इंदौर। विद दिस टुडेज ऑल इंडिया नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक कम्स टू एन एंड।